थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: वफादारी का महत्व. जीवन में संबंध के सुख जैसा सुख नहीं, लेकिन बदलते जमाने में संबंध को टिकाना बड़ा कठिन. आजकल संबंधों में प्रेम के स्थान पर स्वार्थ जो पनप रहा है, जिससे संबंध लंबे समय तक नहीं चलते, उसके लिए चाहिए संबंधों में वफादारी. बिना वफादारी के संबंध ना मजबूत होंगे ना ही लंबे समय तक टिक पाएंगे. रिश्तों की डोर वफादारी के बलबूते पर ही तो मजबूत होती है. ये वो अद्भुत गुण है जो मानव को धर्मात्मा होने का गौरव प्रदान करता है. वफादारी अर्थात संबंधों में सत्यता व सच्चाई का पालन करना, रिश्तों नातों में एकनिष्ठ होकर के रहना, पिता पति मालिक स्वामी के प्रति ईमानदार होकर के रहना. वफादार व्यक्ति परिवार समाज व राष्ट्र के निर्माण में नींव की मजबूत शिलाओं के समान होता है. वफादारी का गुण हर हालत में अडिग रहने का बल देता है. जीवन की हर कीमत चुकाकर भी वफादार अपना वादा पूरा करता है. वफादार व्यक्ति में साहस त्याग सहनशीलता जैसे गुण भरपूर मात्रा में पैदा होते रहते हैं. वफादारी संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है. व्यक्तिगत हानि लाभ को परे रखकर वफादार व्यक्ति संबंधों को महत्व देता है और अंत तक उसे निभाने के लिए हर परिस्थिति का बहादुरी से सामना करता है. वफादार व्यक्ति मालिक व स्वामी के प्रति सदा एकनिष्ठ होकर के रहता है और आजीवन देवे वचन का पालन करता है. स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही देशभक्तों ने मातृभूमि की वफादारी के खातिर प्राणदान भी दिए. रामायण में भाई राम जी के प्रति लक्ष्मण जी आजीवन वफादार रहे और भौतिक सुखों का त्याग कर वनवास के 14 विपदा भरे वर्षों में श्री राम जी का साथ दिया. सीता जी पतिव्रता बन श्री राम जी के साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक वफादार रही और वफादारी को निभाते निभाते अनेक कष्ट सहती गई और आदर्श पत्नी का रूप प्रस्तुत कर गई. अतः वफादार बनिए और संबंधों को अटूट और सम्माननीय बनाइए. ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.

मुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु। आज के इस विशेष प्रोग्राम में मनीषा आपका स्वागत करती है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुबर्णा रॉय, जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट है। ICMR NITM बेलगावी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय पर कार्य करने वाला देश का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। डॉक्टर सुबर्णा रॉय के नेतृत्व में संस्थान ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष, इंटरग्रेटिव हेल्थ केयर तथा पब्लिक हेल्थ रिसर्च के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर, हमारे वेणुधुनी के स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: सबसे पहले तो अपने बारे में और अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मैं डॉक्टर सुबर्णा रॉय हूँ। बाई ट्रेनिंग मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, MSc PhD, और ICMR का मैं पिछले 20 साल से ICMR में काम कर रहा हूँ। ICMR NITM जो है, जैसे आपने बताया, ये हमारे पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान संस्था है, जो ICMR का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जो इंटीग्रेटिव हेल्थ में काम करते हैं। बेसिकली हम लोग सब मॉडर्न साइंसेस बैकग्राउंड के साइंटिस्ट हैं, और हम लोग जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके ऊपर शोध करते हैं। जैसे कुछ आता है जो आयुष के अंदर आता है, आयुर्वेदा, सिद्धा, उनानी, स्वारिकपा, नेचुरोपैथी, योगा, और कुछ होते हैं जो इसके बाहर का भी प्रैक्टिस होता है, जो दादी माँ के नुस्खे टाइप का, जो हम लोग घर पे यूज करते हैं,
0: होम रेमेडीज,
1: या फिर जो ट्राइबल हीलिंग प्रैक्टिसेस है, जो गाँव में लोग यूज करते हैं, ट्राइबल हीलर्स होते हैं, पर्टिकुलरली ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल बेल्ट्स में होते हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे जो शोध है, जो इसमें से ऐसे बहुत सारा सॉल्यूशंस है जो एक्चुअली इफेक्टिव है, और उसके लिए जो शोध है वो हम लोग करते हैं, और जो स्टडीज हम लोग शुरू करते हैं वो फील्ड से शुरू होता है, जो कोई इसका प्रैक्टिस होता है या फिर जो आयुष से आता है उसका लेते हैं, करके उसका सेफ्टी स्टडीज करते हैं, उसका टॉक्सिसिटी का स्टडीज करते हैं, उसके बाद उसका मॉलिकुलर मैकेनिज्म हम लोग डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, जो उसका केमिस्ट्री है, जो अगर पौधों से काम होता है तो ये पौधों में क्या क्या कंपोजिशन है उसका करते हैं, सीजनल वेरिएशन का करते हैं। उसके बाद हम लोग जाते हैं हमारा एनिमल स्टडीज के ऊपर।
0: अच्छा।
1: तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, शोध करते हैं, और जो अच्छे जो लीड्स मिलता है उसको हम लोग आगे लेके क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वो होता है हॉस्पिटल्स में और कुछ होता है कम्युनिटी सेटिंग्स में, डिपेंडिंग ऑन कौन सा डिजीज के लिए कौन सा दवाई है। और इसमें हमारे मॉडर्न मेडिसिन के लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, इसमें बेसिक साइंटिस्ट है जो MSc PhDs है, इसमें हमारे बायो इन्फॉर्मेटिशियंस है, इसमें केमिस्ट है, सोशल साइंटिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन के लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारा डिसिप्लिन हम लोग एकत्रित होके ये साइकिल हम लोग खत्म करते हैं।
0: अच्छा।
1: और जिसमें अच्छा जो रिजल्ट्स आएगा क्लिनिकल ट्रायल्स में, इंटेंशन ये है कि वो एक्चुअल प्रैक्टिस में बदलाव आए। सो इट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स एफिकेसी आल्सो। ये हमारा इंस्टीट्यूट का काम है।
0: अच्छा, उसी के साथ सर, ICMR का उद्देश्य क्या है मुख्य?
1: ICMR भारत का जो प्रीमियर हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो प्रमुख हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका शुरुआत हुआ था 1911 में। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। ICMR का जब शुरुआत हुआ था, इसका नाम था IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। तो इससे जो फर्स्ट शुरू हुआ काम, वहाँ का वो टाइम का जो भी हेल्थ जो डिजीज था, जो प्रॉब्लम्स था, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर उसका सलूशन निकालना, इसी से शुरू हुआ था। फिर रिसर्च फंडिंग भी एक मेजर एक्टिविटी था, जो नॉन ICMR इंस्टीट्यूट्स को फंड्स दिया जाता है, तो ये फंडिंग बॉडी के रूप से भी काम करता था और अभी भी करते रहे हैं। सो अभी जो मेन ICMR का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है उसके अंतर्गत आता है। ICMR का 28 इंस्टीट्यूशंस है अक्रॉस द कंट्री। कुछ है स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स जो कोई एक एरिया के ऊपर या एक डिजीज के ऊपर काम करता है, जैसे कि हमारा चेन्नई में ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम होता है NIRT में, हमारा मुंबई वाला इंस्टीट्यूट जो है जो वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, देन हमारे इंस्टीट्यूट है पुणे में जो वायरोलॉजी का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरल डिजीजेस के ऊपर काम करते हैं। वैसे हमारा इंस्टीट्यूट है जो बेलगाम में है, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम करते हैं। ये छोड़ के और भी हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो रीजनल मेडिकल रिसर्च

0: सेंटर के नाम से जाना जाता था, अभी उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च NIHR। सो ये डिफरेंट लोकेशंस में स्थित है और वो जो रीजन का जो प्रॉब्लम्स हेल्थ रिसर्च प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, एंड देन पूरा नेशनल लेवल पे भी जो मेजर जो डिजीजेज है या प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी शोध करते हैं। तो अभी हमारा जो ICMR का जो मेन फंक्शंस है वो है पूरा जो कंट्री का हेल्थ रिसर्च इकोसिस्टम, इसके ऊपर काम करना, नए टेक्नोलॉजीज लाना, नए दवाई निकालना और पॉलिसी गवर्नमेंट को पेश करना। सो पॉलिसी विल कम ओनली आफ्टर एविडेंस। तो हम लोग रिसर्च एविडेंस में डेटा जनरेट करते हैं और उसी को ही हम लोग पॉलिसी करके गवर्नमेंट को देते हैं। सो ये हमारा ICMR का मेन फंक्शन है। ये हो गया ICMR का अपना सेटिंग में।
1: अच्छा।
0: लेकिन ICMR जैसे मैंने बताया कि इट इज ऑल्सो अ फंडिंग बॉडी, तो जो भी हेल्थ रिसर्च दूसरा इंस्टीट्यूट्स में होता है, आप चाहे KLE में ले लीजिए कि एम्स में ले लीजिए कि CMC में ले लीजिए कि और भी कोई भी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, इसका जो अच्छे अच्छे जो इनिशिएटिव्स होता है रिसर्च का, इसका फंडिंग होता है। तो इसका एक मैकेनिज्म है, इसका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसको रिव्यू होता है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी और जो जिसका ज्यादा सोल्यूशन आने का चांसेस ज्यादा है उसको फंडिंग मिलता है। सो इसीलिए ICMR इज एक्चुअली द एंटायर हेल्थ रिसर्च ऑफ द कंट्री इज काइंड ऑफ ICMR।
1: भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में ICMR की भूमिका कितनी इम्पोर्टेंट है?
0: जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा ट्रीटमेंट पॉलिसी सब कुछ डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, एविडेंस के ऊपर, और ICMR वही एविडेंस जनरेट करता है, चाहे उसका अपना इंस्टीट्यूशन से हो या फिर जो उसका कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस को फंड किया गया है, जो मेडिकल बॉडीज है, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उन लोगों के ऊपर। तो ये सब इकट्ठा करके एविडेंस तैयार होता है और एविडेंस डिटरमाइंस पॉलिसी। नए ड्रग्स, नए ट्रीटमेंट रेजिम्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी ये सब ICMR हेल्थ रिसर्च में इसका कंट्रीब्यूशन करता है कंट्री के लिए।
1: वर्तमान समय में सर ICMR किन प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रों पर काम कर रहा है?
0: ICMR इंडिया का, इंडिया सेंट्रिक जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें एक हो गया कम्युनिकेबल डिजीजेस, दूसरा हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो मेजर एरियाज ट्रेडिशनली था, उसके ऊपर से अभी नए प्रॉब्लम्स है जैसे कि कैंसर का बहुत महत्व रखता है, अभी नए चीज़ें भी आ रहे हैं जैसे कि एनवायरमेंटल हेल्थ, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का भी हेल्थ इम्प्लिकेशंस आता है। तो ये सब 360 डिग्री ऑफ हेल्थ रिसर्च इज डन बाय ICMR और फोकस उसमें ही रहता है जो नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट डिटरमिन करते हैं कि ये हमारा प्रायोरिटीज़ है, तो उसके ऊपर ICMR काम करते हैं।
1: भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में क्या ऐसे बदलाव आए हैं?
0: ये जो स्वास्थ्य का जो इश्यूज है ये भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। पहले बहुत सारा कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज़्यादा था,
1: बिल्कुल,
0: जो दवाइयाँ आने के बाद या फिर दूसरा टेक्निक्स आने के बाद वो थोड़ा कम हुआ था। इंसिडीज बढ़ता गया, जैसे कि अभी हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है या फिर डायबिटीज़ ले लीजिए, कैंसर्स ले लीजिए, ये बढ़ रहा है। अभी इन्फेक्शस डिजीजेस पहले जैसे उतना खतरनाक तो नहीं रहा, लेकिन प्रॉब्लम है जैसे कि कोविड का पेंडेमिक आपको देखने को मिला, अचानक कभी भी कुछ चीज आ सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, अभी हम लोग जब एंटीबायोटिक लाए, एंटीबायोटिक वॉज द मेन रीजन वाई वी हैड लेस बर्डन ऑफ इन्फेक्शस डिजीजेस इन द पास्ट, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। नॉर्मल जो एंटीबायोटिक अवेलेबल है उसमें काम नहीं होता है और हमारे पास ज़्यादा एंटीबायोटिक्स है नहीं, तो बड़े हॉस्पिटल्स में, टर्शियरी केयर सेंटर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो रेजिस्टेंट है सब ऑर्गेनिज्म में, उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो ये नए चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्फेक्शस डिजीज में काम होता है, और जो नॉन इन्फेक्शस जो है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, उसमें ये हाइपरटेंशन है, माल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज है, कैंसर्स है, जिसके ऊपर हमारा रिसर्च बढ़ाया गया है। और नया जो है वो है जैसे बताया अभी वन हेल्थ कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें हम लोग वेटरनरी, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ सब एक साथ देख रहे हैं हम लोग। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि हम लोग अगर ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में कि कोई फार्म एनिमल्स में यूज़ करते हैं, तो वो ह्यूमन चेन में भी आ जाता है, तो उसको कैसे उसको रोध किया जाए उसके ऊपर भी काम होता है। सेकेंडली है द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, अभी बहुत कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बहुत बढ़ गया है, आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस आया है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज आया है, तो इसको हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं हमारे सॉल्यूशंस ढूंढने में, और इट बिकम्स मच इजियर टू एक्चुअली मैनेज एंड इवन डिजाइन न्यू इंटरवेंशंस।
1: स्वास्थ्य अनुसंधान से आम नागरिकों को क्या लाभ मिलता है?
0: एविडेंस से ही पॉलिसी और ट्रीटमेंट डिटरमाइन होता है। जब तक हम लोग रिसर्च या स्वास्थ्य का अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक ये एविडेंस मिलता नहीं रहेगा, और ये भी चेंज होता रहता है। एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग, हर दिन नए नए इंफॉर्मेशन मिलता है। जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उसका अपडेट होना बहुत जरूरी होता है, और उसके हिसाब से समटाइम्स ट्रीटमेंट में ऑल्सो चेंज, नॉलेज चेंजेस, तो उसका नए नए तरीके आते हैं। जैसे मैंने बताया टेक्नोलॉजीज आने लगे हैं, अभी जो शोध बहुत साल लगता था अभी बहुत जल्दी ये शोध होता है। सो टाइम ऑल्सो हैज काइंड ऑफ शॉर्टेंड फॉर गेटिंग न्यू ड्रग्स, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इन टू रिसर्च।
1: मान लीजिए सर कि कोई अगर नई दवा आती है तो उस पे उपचार पद्धतियों पर किस प्रकार संशोधन या फिर शोध होता है?
0: अगर नए कोई दवाई आता है तो उसका भी एक आने का एक प्रोसीजर रहता है। सो बहुत सारे फेजेस बोलते हैं, वो उतर के फिर नए दवाई आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दवाई जो एक बार ये सब जो फेजेस है ये उतर के आया देन वो बहुत साल रहा, वो भी कभी कभी नहीं होता है।
1: अच्छा।
0: बिकॉज सेफ्टी इश्यूज भी रहते हैं उसमें। सो जो पहले स्टडीज में पता नहीं चलता है तो वो पोस्ट मार्केटिंग भी मॉनिटरिंग होता है। सो ये जो स्टेजेस मैंने बताया, फर्स्ट शुरू होता है लेबोरेटरी के काम से, वो लेबोरेटरी में मॉलिक्यूल्स लेके या फिर कोई ड्रग्स लेके इसके ऊपर हम लोग इन विट्रो स्टडीज बोलते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में करते हैं। उसके बाद आता है एनिमल स्टडीज, हम लोग नॉर्मली छोटे एनिमल से चालू करते हैं।
1: अच्छा।
0: कभी कभी ज़ेब्रा फिश में करते हैं क्योंकि एथिकल रीजन, हमें सबका एथिक्स का जो स्टैंडर्ड्स है वो मान के ही हमें करना पड़ता है ताकि एनिमल लाइफ भी कम हो। तो वो लेके उसका अगर सक्सेस होता है तो वो जाता है एफिकेसी स्टडीज में, तो वो कितना इफेक्टिव है एनिमल्स में वो स्टडीज हो जाता है। वो होने के बाद फिर जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स होता है उसमें बहुत सारा फेजेस आता है। फर्स्ट होता है फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। तो ये जो फेज वन है ये बहुत कम लोगों, 10-15 लोगों में काम किया जाता है, और उसमें बेसिकली सेफ्टी देखा जाता है कि ह्यूमंस के लिए सेफ हो। एक बार सेफ हो गया देन उसके बाद बड़ा स्टडीज किया जाता है कि हाउ गुड इट इज, वेदर जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उससे बेहतर है कि ऐसे ही है कि ऐसा नहीं है। तो अगर उससे बेहतर है या फिर मोर कॉस्ट इफेक्टिव है तो आगे जाता है। तो फिर देन उसके बाद बड़ा स्टडीज होता है, इन लार्ज पॉपुलेशन मोस्टली मल्टीसेंट्रिक स्टडीज होता है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें देखा जाता है कि ये कैसे काम कर रहा है, देन एक बार वो हो गया देन मार्केटिंग लाइसेंस होता है, देन मार्केट में आ जाता है। और उसके बाद एक फोर्थ फेज होता है जो बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग स्टडी। तो ये पोस्ट मार्केटिंग मार्केट में आने के बाद वो रियल लाइफ कंडीशन में देखा जाता है कि लोगों का ऊपर कैसे असर कर रहा है।
1: अच्छा।
0: तो उसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी का भी पार्ट रहता है कि हो सकता है कि बहुत सारा लोगों में से एक लोगों का कुछ एडवर्स इवेंट हो, तो लेकिन वो भी जानना जरूरी है ताकि हम लोग केयरफुल रहे कि अगर एक लेके थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, कभी कभी रैशेस निकलता है कि
1: करेक्ट,
0: जो भी है, तो उसमें केयरफुल होना जरूरी है। तो ये होता है, ऐसे बहुत सारा हिस्ट्री में वर्ल्ड वाइड ऐसे ड्रग्स है जो पोस्ट मार्केटिंग के बाद भी विदड्रॉ किया गया बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज। तो इसलिए ड्रग्स हमेशा सुपरवाइज्ड रहता है।
1: ओके। आज भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ कौन सी है सर?
0: मैं इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो क्लासिकल है कम्युनिकेबल डिजीज का, इन्फेक्शस डिजीज का, जो हम लोगों को कोविड ने दिखाया। अभी इबोला का एक आउटब्रेक चल रहा है जो WHO ने भी डिक्लेयर किया है। तो ऐसे कोई भी वायरस हो, बैक्टीरियल स्ट्रेन हो सकता है कि बहुत बुरी तरह से फैल सके, बिकॉज हम लोग आजकल बहुत ट्रैवल करते हैं, एक जगह में होता है तो दूसरा जगह में बहुत आसानी से आ जाता है, चाहे थ्रू ships, imports हो, goods हो, या फिर human से हो कि animal से हो, आ जाता है। सो ये चैलेंज तो हमेशा हमारे पास रहेगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका अगेंस्ट में ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो क्योंकि हमें आइदर उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स चाहिए, नहीं तो उसको ट्रीट करने के लिए ड्रग्स चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है इन्फेक्शस डिजीज का। दूसरा है राइजिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमारा लाइफ स्टाइल की वजह से, कि हमारा फूड के वजह से, अभी हमारा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो, मेंटल हेल्थ हो, ये सब हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसको इसका समाधान ढूंढना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल है। जो इन्फेक्शस डिजीज में है, हमें पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से होता है, अगर उसको रोक सके तो उसको कंट्रोल में आ जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ज्यादातर केसेस में ये मल्टी फैक्टोरियल होता है, तो इसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना मेजर थ्रस्ट एरिया होता है, तो ये एक इशू है। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो आ रहा है आजकल का रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो क्लाइमेट चेंज के वजह से हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इश्यूज है, एनवायरमेंटल हेल्थ पॉल्यूशन, इसके वजह से नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर पुराना प्रॉब्लम्स को और भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है। स्क्रीन टाइम हमारा, डिवाइसेस, सो ये सब नए चीजें हैं जिसका इफेक्ट नॉट ओनली ऑन आवर फिजिकल हेल्थ बट ऑन मेंटल हेल्थ भी होता है। सो दीज आर न्यू चैलेंजेस दैट हैव,
1: तो इन पे अगर हमें कंट्रोल पाना है तो हम क्या कर सकते हैं या फिर क्या सलाह देंगे हम लोगों को?
0: अगर हम लोग ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बात करें तो परहैप्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द बेस्ट वे फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेस्ट। हम लोग तो हमेशा बचपन से सुनते रहे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये जो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारा लाइफस्टाइल, मोबिलिटी बढ़ाना है, एक्सरसाइजेस करना है, जो डाइट हम लोग ले रहे हैं, अभी बच्चे तो फास्ट फूड के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं। हेल्दी फूड जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड्स जो है, चाहे कोई भी रीजन का हो, हफ्ते में कितना दिन वो एक्चुअल ट्रेडिशनल फूड्स लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, लेकिन इसके वजह से क्या है कि जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स है उनको मिलता नहीं है। इवन सप्लीमेंट्स भी लेंगे तो भी वो जितना हम लोग नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है और जो उसका मेटाबॉलिज्म होता है उतना होता नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है। स्लीप बहुत इम्पोर्टेंट है, आजकल बहुत लोग स्लीप डिप्राइव्ड है, बच्चे अगर बहुत पड़ाकू है तो रात को जाग के पढ़ते हैं, लेकिन उसका एक्चुअली इफेक्ट होता है अपने सेहत के ऊपर, तो वो भी ध्यान देखना चाहिए, सेहत है तो भी पढ़ाई होगा,
1: बिल्कुल।
0: देन आता है एडिक्शन, ये एक मेजर इशू है, तो एडिक्शन बहुत तरीके होता है, इसको मैं स्क्रीन एडिक्शन भी मैं इसी में ही डालूंगा, क्योंकि वो भी एक एडिक्शन ही है, बहुत ज्यादा मोबाइल फोन चलाना, देखना, कंप्यूटर्स के सामने। इवन जो प्रोफेशनल्स है, हम लोग ज्यादातर आजकल जो व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स है, कंप्यूटर्स के बिना तो चल नहीं सकते, हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो उसका भी इफेक्ट होता है। सो ये सब कम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइनली स्ट्रेस, अभी शायद हर कोई स्ट्रेस में रहता है, यू cannot find anybody who is not under stress. लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए we have to learn to cope up with stress and manage them well.
1: Okay. उसी के साथ सर, आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज हो या फिर हाइपरटेंशन हो और हार्ट अटैक भी, ये सारी जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है, तो उसका क्या रीजन होगा?
0: मैं जैसे कहा है कि ये मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, और ये मल्टी फैक्टोरियल है, कोई भी एक फैक्टर से इसका हम लोग समस्या का समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे, तो हमें पूरा होलिस्टिकली उसको देखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हम लोग जितना मॉडिफाई कर सकते हैं उसको करना है। जो कंप्यूटर में, जो डेटा सेंटर में काम करते हैं, उसको तो नहीं बोल सकते हैं कि आप कंप्यूटर के सामने मत रहो, उनको तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका अपना सेहत का भी ख्याल रखना है। कुछ देर अगर वर्किंग पॉपुलेशन में है, फिट है, तो कुछ देर एक्सरसाइज करें। फूड, उसमें तो हर किसी का ध्यान होना चाहिए, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, अगर स्टूडेंट हो कि रिटायर्ड पर्सन हो, हेल्दी फूड इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। तो उनका जो डाइट के हिसाब से जो अच्छा सूट करता है, लेकिन विद ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज, वो लेना बहुत जरूरी है। अवॉइड एडिक्शंस, चाहे वो टोबैको का हो कि लिकर का हो कि इवन स्क्रीन का हो, ये अवॉइड करना चाहिए। स्लीप बहुत जरूरी है, दे शुड इंश्योर दैट दे हैव प्रॉपर साउंड स्लीप वट एवर टाइम पॉसिबल फॉर दम। थोड़ा सा अनुशीलन लाना चाहिए अपने, डिसिप्लिन लाना चाहिए अपने लाइफ में, तो ये इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में। आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 FM KLE कनेक्शन।

0: मेंटल स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर?
1: मेरे जानकारी के हिसाब से आज के दिन में 7 में से 1% कोई ना कोई मानसिक समस्या के शिकार है. सो यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग विद मेंटल, आई वुड नॉट से डिसऑर्डर्स बट एटलीस्ट विद सम प्रॉब्लम. इंडिया का सुइसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है. इसीलिए ये जो मेंटल हेल्थ वाला जो इशू है ये ट्रेडिशनली थोड़ा निगलेक्ट किया गया. हम लोग भी सोचते हैं कि ये, हम लोग बोलते हैं पागल है, पागल नहीं है. हम लोग सब स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होता है. जैसे फिजिकल हेल्थ भी होता है, कभी कभी हम लोग बीमार रहते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता बॉडीली, वैसे मेंटल का भी सेम ही इशू है. इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्ट्रेस का इशू है, स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होता है, इसका मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए हमेशा कोई भी काम के साथ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी की ज़रूरत है. अगर कोई म्यूज़िक में, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक करे, किसी को पेंटिंग करना आता है पेंट करे, कुछ नहीं है तो फ्रेंड्स के साथ बातें करे. तो ऐसे टाइप का आप अपना जो अच्छे चीज़ जो लगे उसमें थोड़ा मेंटली डाइवर्शन बहुत ज़रूरी है. जब ज़रूरत पड़े दे शुड इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर एज वेल, क्योंकि दे विल बी एबल टू हेल्प देम आइदर थ्रू काउंसलिंग और इफ़ रिक्वायर्ड थ्रू ड्रग्स. मोस्टली काउंसलिंग से ही बहुत चीज़ें सुलझा जा सकता है. सो ये बहुत ज़रूरी है. अभी जो हम लोग विकसित काल जो बोल रही है, अमृतकाल में जो विकसित भारत का गोल्स है उसके हिसाब से हम लोग मेंटल हेल्थ में भी बहुत सारा स्ट्रेस दिया गया है. बिकॉज ये अमृतकाल के बाद हमारे लोगों का जो एवरेज एज है, हम लोग बुढ़ापे के और जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगा. और एज में मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिमेंशिया आता है, भूलने का आदत. सो ये आजकल बहुत जल्दी आने लगा है. थोड़ा और जाने के बाद वो अल्जाइमर्स टाइप का भी हो जाता है, तो कम्प्लीटली भूलने का जो आदत है वो हो जाता है. सो इसीलिए बट दिस आर मोस्टली प्रिवेंटेबल. इसका अगर हम लोग शुरू से ही हम लोग उसके लिए तैयार होते हैं कि हम लोगों को एक्टिव रहना है. एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो डेमेंशिया के लिए बताते हैं लोगों आपको कैलकुलेट करना या फिर थोड़ा पढ़ाई करना, तो क्या है अपना ब्रेन को यूज़ करना वो बहुत ज़रूरी है. इवन आफ्टर रिटायरमेंट पीपल शुड बी एक्चुअली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इसमें एविडेंस है कि आप जितने ज़्यादा ये पढ़ाई लिखा किया हो कि या फिर आप करते हो तो उसमें आपका वो जो डिमेंशिया का ऑनसेट एज है वो डिले हो जाता है. एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप योगा करते हो कि कोई एक्सरसाइज करते हो वो भी डिमेंशिया को डिले करता है एंड इट हेल्प्स इन बस्टिंग स्ट्रेस ऑल्सो. तो इसीलिए दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर नाउ बींग प्रमोटेड प्रोमोटिव हेल्थ में. सो हमें बीमार होना ही नहीं है. सो द बेस्ट वे इज टू प्रिवेंट. और जो पहले का हमारा आउटलुक था कि हम लोग हमेशा डिजीज बेस्ड सॉल्यूशंस ढूंढते थे, अभी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस इन विच वी डू नॉट बिकम डिजीज्ड, वी रिमेन फिट एंड हेल्दी. सो यही मंत्र है अभी.
0: बिल्कुल सर, युवाओं में ये जो बढ़ता तान तनाव है या फिर स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा पाई जाती है उसके बारे में क्या सलाह रहेगी?
1: ये जो मैंने बताया कि अमृतकाल का हमारा जो टाइमलाइन है इसका वन ऑफ द रीजन इज दैट हमारा जो एज है, एवरेज एज है, वो बहुत यंग है, बहुत प्रोडक्टिव है. और इसी प्रोडक्टिव एज को सब मिल के अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही भारत का विकसित प्लान के हिसाब से जाएगा. तो इसीलिए जो ये जो युवाएं हैं ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है हमारे पॉपुलेशन में, बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव ग्रुप. और दैट इज द रीजन व्हाई देयर हेल्थ बिकम्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू बी फिट and they have to be able to actually work and make take India to the next level. So isiliye they must follow these few principles of taking care of their health through proper diet, through proper sleep, through busting stress, tanav kam karne ke liye, by having good habits, bringing in discipline in their life, avoiding substances for abuse and leading a good healthy lifestyle.
0: सर आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे रील्स रहे या फिर कई सारे मैसेजेस रहे, वो देख के कई सारे अफवाह रहती है, वो देख के लोग उसको फॉलो कर देते हैं और उससे उनके हेल्थ पे मतलब साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं, तो इनसे हम कैसे बचे?
1: जो रील्स में आता है उसमें से ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो गलत होता है और उसका कोई बेस नहीं होता है.
0: अच्छा.
1: So people should not follow blindly.

0: whatever are told in social media and in reels. They should only follow those which come from authentic source. Jo government ka source rehta hai ki actual research body jaise ICMR ka source hai, isi ko hi mane. Baki jo hai, they should take always with a pinch of salt. तो किससे सुन रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: करेक्ट.
0: क्योंकि सोशल मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पब्लिसिटी के लिए
1: बिल्कुल
0: कुछ भी बोल देते हैं. हाँ, हो सकता है उन लोगों का रील्स ज्यादा शेयर हो, उनको वो स्टार बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हैं वो सही है.
1: करेक्ट. तो वो थोड़ा सा हमें स्टडी करके उस पे भरोसा करना चाहिए.
0: एग्जैक्टली. इसीलिए बेस्ट वे इज दैट जो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स है, कि जो ऑथेंटिकेट सोर्स है, जो गवर्नमेंट का सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सोर्स है, ऐसे सोर्सों को बिलीव करें. और जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस है, अगर KLE का ऑफिशियल हैंडल से कुछ निकलता है, सो पीपल शुड बिलीव दैट. जो दूसरा इंस्टीट्यूट्स का, जो रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट्स का, उसका ऑफिशियल हैंडल से कोई आता कुछ निकलता है तो उसको दे कैन बिलीव. लेकिन नॉट जस्ट एनीबडी saying something और उसको believe करके और उसका follow करना वो सही नहीं है.
1: बच्चे और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है?
0: महिलाओं में particularly जो गर्भवती हैं, इन लोगों का health बहुत important, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनका जो fetus है, जो बच्चे पैदा होगा, उनके लिए भी बहुत important है. रेगुलर एंटीनेटल चेकअप होना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए. वैक्सीनेशन जो है वो लेना जरूरी है. जो IFA टैबलेट्स वगैरह जो आयरन के लिए जो दिया जाता है, फोलिक एसिड दिया जाता है, इसको कॉम्प्लायंस बहुत इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो क्या है, बाद में उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है. जहाँ तक बच्चे का सवाल है, इन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो वैक्सीनेशन स्टिक से लें, जो भी वैक्सीन का रेजिमेन है. हाइजीन उनको लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि उनका इन्फेक्शन कुछ ना लगे, वो इम्पॉर्टेंट है. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ ऑफ एज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना है. एंड न्यूट्रिशन के लिए भी, बोथ मदर एंड चाइल्ड का न्यूट्रिशन हमेशा एकदम अच्छा रहना चाहिए. पोषण ठीक से होना जरूरी है. इवन अदरवाइज जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, तो इनका भी अपना सेहत के ऊपर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, पर्टिकुलरली विद देयर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल.
1: इसी के साथ सर, क्या नियमित स्वास्थ्य जांच आवश्यक है?
0: डेफिनेटली. सबको जो 30 इयर्स के ऊपर है, उनको तो नियमित स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है. हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हम लोग लोगों को देखते हैं कि दे आर फिट, लेकिन कभी उनका BP लेने जाएंगे तो देखेंगे कि ब्लड प्रेशर है. सो क्या है, समटाइम्स पीपल डू नॉट नो दैट दे हैव हाई BP.
1: करेक्ट.
0: बिकॉज दे हैव नॉट चेक्ड. तो ये बहुत जरूरी है. सिमिलर थिंग विद ब्लड शुगर ऑल्सो, कि प्री डायबिटिक स्टेज में बहुत सारा लोग पाए जाते हैं जिनको पहले पता ही नहीं था कि वो प्री डायबिटिक है. इवन डायबिटिक जो है उनको भी कभी कभी पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक है.
1: बिल्कुल.
0: तो इसलिए ये जितना जल्दी इसको हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गया डिटेक्ट करने में तो देन मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ता है. लाइफस्टाइल चेंजेस करना बहुत रिगरस होता है, वो डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए जितना जल्दी टेस्ट करेंगे, जितना जल्दी उसको डिटेक्ट करेंगे, यू कैन एक्चुअली मैनेज दैट और इवन रिवर्ट बैक फ्यू लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस.
1: ओके. सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है?
0: आज के दिन में AI और टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हेल्थ और इंक्लूडिंग हेल्थ रिसर्च. मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. ये जो डिजिटल और जो डिजिटल हेल्थ का है, ये जो भी आजकल का स्कीम्स जो लॉन्च हो रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो कि वैक्सीनेशंस का हो, सब आपके साथ आधार के साथ लिंक रहता है. एक ही जगह में आपको इमीडिएटली डेटा मिल जाएगा कि किसने क्या वैक्सीनेशन लिया है, के कब लिया है, उसका कुछ डोज बाकी है कि नहीं. हम लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था, ये मैं 10 साल पहले का बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पहली बार बहुत सारा केसेस ऑफ डिप्थीरिया डिटेक्ट किया बीजापुर और बागलकोट एरिया में. अब हम लोग जब उनका वैक्सीनेशन हिस्ट्री लेने गए, उन लोगों को दे आर अनेबल टू टेल कि उन्होंने वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं लिया था, कब लिया था, कितना डोज लिया था, बताया नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं था. कार्ड दिया जाता था, लेकिन कार्ड में कितना एंट्रीज है डिजिटली कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है, कार्ड खो गया तो खो गया. सो ऐसे होता है, लेकिन दीज आर ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस. लोगों को मरना नहीं चाहिए इसमें, लेकिन एक बार ये सब डिजिटाइज हो गया, देन यू कैन एक्चुअली गेट बैक योर डेटा वेरी इजीली. तो आपका चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का हो, आपका ट्रीटमेंट का प्रोफाइल हो, सब कुछ ये टेक्नोलॉजी हेल्प करता है. टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन डिजाइनिंग न्यू थेरेपीज, इन डिटेक्शन आपका इतना सारा अभी गैजेट्स आ रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक गैजेट डेवलपमेंट स्टेज में है, आईआईटी दिल्ली के साथ आईसीएमआर काम कर रहा है, वो एक वेयरेबल हेलमेट है जो टू व्हीलर में आप चल के अगर जाओगे, अगर आपको आप गिर गया फिर कोई सर पे चोट लगा तो दैट हेलमेट में ही सेंसर्स है, इट कैन एक्चुअली टेल यू कि आपको हेमरेज होने का चांसेस है कि नहीं है। सो इट कैन बी सच अ लो कॉस्ट एंड सच पोर्टेबल थिंग, आपको हमेशा उसके लिए MRI करने के लिए लेके जाने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए तो ये यूज हो सकता है ये अर्ली स्टेज में। लेकिन ये दीज आर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग, इसके साथ आप AI डाल दीजिए तो एक बार इसका AI के लिए भी तो हमें डेटा चाहिए, तो ये डिजिटल डेटा अगर जितना ज्यादा हम लोग डिजिटल डेटा जनरेट करेंगे उसके ऊपर हम लोग AI लगा सकते हैं और उसका जो इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है, जो उसका रोबस्टनेस है वो बढ़ता रहेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ये हर फील्ड में हो रहा है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हिच इज मोस्ट वेलकम।
1: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, इतना बड़ा बदलाव फिर देख पाएंगे हम अगर वो यूज में आ गया तो।
0: ये आ जाएगा कुछ सालों में ही ये सब आ जाएगा।
1: अच्छा, डिजिटल हेल्थ सेवाएं भविष्य में किस प्रकार मदद करेंगी सर?
0: मैंने जैसे बताया कि डिजिटल हेल्थ होने से क्या है, एवरीथिंग बिकम्स योर कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, सब रिकॉर्ड्स में रहता है।
1: करेक्ट,
0: मैंने जैसे बताया कि डेटा ही ड्राइव करता है हमारा पॉलिसी, हमारा एविडेंस, ये सब एक साथ आप चुटकियों में आप डेटा निकाल पाएंगे और क्या जरूरत है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई एक पर्सन का भी अगर मेरा पूरा हेल्थ डेटा एक जगह में रहा, कोई भी डॉक्टर मुझको मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट दवाई हो सकता है या फिर कुछ रेमेडी हो सकता है वो सजेस्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, ये आजकल ऐप आ गया है, ये आयुर्वेद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो वाता पिता कपा है का वो जज करने के लिए ऐप्स आ गया है, तो ये बिकम्स मच इजियर और आप उसमें डालेंगे और उसके हिसाब से आपका जो डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करेंगे वो आसानी हो जाता है। सो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया, ऐसे बहुत सारा चीज है जिसमें डिजिटल हेल्थ इज एक्चुअली हेल्पिंग। देन इंश्योरेंस सेक्टर में तो है ही, तो बहुत सारा जो स्कीम्स आ रहा है जो पर्टिकुलरली फॉर द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, इट विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एक्चुअली यूजिंग दिस हेल्थ टेक, डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर।
1: ICMR की भविष्य की योजनाएं क्या है?
0: अभी क्लासिकली हम लोग इंडियंस हर चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढने में बहुत माहिर है, लेकिन सॉल्यूशंस देना बहुत डिफिकल्ट होता रहा है। सो अभी हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत कुछ है, इतना बड़ी देश है, इतने लोग हैं, अभी फोकस आ रहा है सॉल्यूशंस ढूंढने में। सो दैट इज वन मेजर फोकस मैं बोल सकता हूँ इन जनरल, कि हम लोगों का एक एक प्रॉब्लम्स को लिया जा रहा है एंड इसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है। एंड दिस सॉल्यूशंस आर नॉट ओनली रिलेटेड टू पीपल हु आर इन टू हेल्थ रिसर्च, ये इंजीनियरिंग सेक्टर भी कर रहे हैं, IITs में भी इसमें सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज भी इसका सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज वन मेजर चेंज दैट हैज हैपेंड। सेकंड मेजर चेंज इज द एरियाज, मैंने बताया अभी जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके वजह से जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाहे हमारा स्क्रीन टाइम का क्यों ना हो, ये जो डिजिटल, ये जो हमारा लाइफस्टाइल में हम लोग जो हमारे वर्क रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसका क्यों ना हो, या फिर इवन इन्फेक्शस डिजीज में ये महामारी टाइप का अगर कोई पैंडेमिक आ गया तो उसका प्रिपेयरनेस क्यों ना हो, तो ये सब के लिए हमारा कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों बनाया जा रहा है। मैं कोविड का एग्जाम्पल दे के बताता हूँ, दैट वॉज अ आई ओपनर। हम लोग तो बहुत जल्दी फर्स्ट इन द वर्ल्ड काइंड ऑफ वैक्सीन बना दिया इतना जल्दी में। अभी हमारे पास BSL-4 का जो एक लैब था, अभी दुनिया का, अभी इंडिया का बहुत सारा जगह में BSL-4 लैब्स बन रहा है, ताकि ये डेमोक्रेटाइज हो जाए हर जगह में, दे बिकम कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग कोई भी कितना भी डेंजरस वायरस क्यों ना हो उसको डिटेक्ट करके उसका सोल्यूशन निकालने में सक्षम है। सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स जो काम कर रहे हैं इनको भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि दे आर एबल टू केटर टू द नीड व्हेनेवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स अराइज। तो बोथ इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में ये सब चेंजेस दिखने को आ रहे हैं।
1: अच्छा, स्वास्थ्य अनुसंधान में करियर बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या अवसर है सर?
0: मैं तो कहूँगा ये एक बहुत एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, करियर इन हेल्थ रिसर्च एंड इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज। जैसे कि ICMR के हर इंस्टीट्यूट में वेरियस प्रोग्राम्स रहते हैं फॉर स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम रहते हैं जो बच्चे बैचलर्स के बाद या फिर प्रेफरेबली मास्टर्स के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अप्लाई करते हैं, वो आके अपने हिसाब से दे कैन डू द इंटर्नशिप, चाहे 2 महीना का हो, 6 महीना का हो, 1 साल का हो. सो उसमें उन लोगों को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है रिसर्च में. उसके ऊपर आता है PhD प्रोग्राम. ICMR का बहुत स्ट्रांग PhD प्रोग्राम है. ये हमारा ACSIR के साथ टाई अप है. ICMR फैकल्टी ऑफ मेडिकल रिसर्च में आता है अंडर द ACSIR फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्रीज. इसमें फेलोशिप भी बहुत अच्छा मिलता है.
1: अच्छा.
0: और उसके साथ साथ उनका PhD करने का अवसर मिलता है. दे कैन चूज एनी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ICMR नेटवर्क इन द कंट्री. ये दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके तरह ही मेरिट लिस्ट बनता है.
1: okay.
0: और जो टॉप रहते हैं मेरिट में तो दे कैन चूज देयर इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स एंड दे कैन गो देयर एंड डू द PhD. PhD होने के बाद पीपल कैन कम एज पोस्ट डॉक्टरल फेलोज. बहुत सारा फेलोशिप्स वगैरह मिलता है वेरियस ICMR इंस्टीट्यूशन में. और अगर दे वांट टू बिकम परमानेंट फैकल्टी, हम लोगों का जो साइंटिस्ट है, हम लोगों का हेल्थ रिसर्च साइंटिस्ट कैडर में हम लोग आते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का है, तो इसका एडवर्टाइजमेंट होता है, सेंट्रल रिक्रूटमेंट होता है. तो दे कैन अप्लाई व्हेनेवर दिस वैकेंसीज आर डिक्लेयर्ड. सो इट कम्स इन द ICMR एंड द इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट्स. इट कम्स इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार समाचार में आता है. उसमें वो देख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट ICMR का हो गया. ये छोड़ के जो हेल्थ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है अक्रॉस अदर देन ICMR ऑल्सो, बहुत सारा ICMR का प्रोजेक्ट चलता है बहुत सारा हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में. मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट्स होता है जो DHR के अंडर आता है. मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट्स है जो मेडिकल कॉलेज में के अंदर है, वहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है जो ICMR और DHR फंडेड है. इसके सिवाय इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल रिसर्च का बहुत महत्व दिया जाता है. तो उसमें रिसर्च सेल्स, रिसर्च यूनिट्स बनाया जाता है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर रिसर्च अपॉइंटमेंट्स किया जाता है एट वेरियस लेवल्स. उसमें भी आ सकते हैं,
1: यानी कि काफी अपॉर्चुनिटीज है,
0: काफी है और ये बढ़ रहा है.
1: युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो कहूँगा रिसर्च एक ऐसा चीज है वेयर यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स. यू कैन ड्रीम एंड यू कैन फॉलो द ड्रीम. तो आप अपना हिसाब से आपका सपना देखो और वो जो सपना है उसको साकार करने के लिए आप रिसर्च को ले लो. और ये एक हमारा एक ही प्रोफेशन है जिसमें आप बताते हो कि आप क्या करोगे. ऑफ कोर्स मेन मैंडेट में होना है, लेकिन आप बताते हो कि आप क्या करोगे. उसके लिए आपको फंड्स मिलता है, चाहे सरकार से हो कि कोई अदर फंडिंग एजेंसी में. तो आपको आपका काम, आपका सोच को साकार करने के लिए पैसा दिया जाता है, आपको सैलरी दिया जाता है और उसका जब रिजल्ट निकलता है वो भी आप आपके नाम से पब्लिश करते हैं.
1: करेक्ट.
0: और नॉट ओनली दैट, इफ योर पब्लिकेशन एंड इनोवेशन इज गुड इनफ, आपका जीवन के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाएगा और जो सब्सिक्वेंट लोग है वो भी आपका नाम कोट करेगा, आपका पेपर का हो कि इनोवेशन का. ये मौका किसको मिलता है?
1: बिल्कुल.
0: तो ये भी देश का ही सेवा है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमेशा रिसर्च को एक करियर बनाओ. और इसमें हर चीज, हर दिन एक नया चैलेंज होता है तो मोनोटोनी नहीं आता है और आप अपना ड्रीम को परसू कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. आखिर में सर, हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या विशेष संदेश रहेगा?
0: मैं कहूँगा कि जो ये हेल्थ रिसर्च और हेल्थ का जो इकोसिस्टम है, ये एक बहुत ही बड़ा रूप में उभर के आने वाला है अगले कुछ सालों में. ये एक अपने हिसाब से एक उद्योग, एक इंडस्ट्री करके बन रहा है. इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है, नॉट ओनली फॉर अस सीकिंग हेल्थ और सीकिंग वेलनेस, इट इज ऑल्सो फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन टेक्नोलॉजीज, इन डिवाइसेस, इन सर्विसेज. तो इसीलिए बहुत सारा जो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस है उसका भी बहुत सारा मौका है. इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरीली दैट एवरीबडी कैन हैज टू कम इनटू द रिसर्च इटसेल्फ, बट दे कैन कम इनटू वेरियस वेज इनटू द हेल्थ सेक्टर. देयर आर प्लान्स, बहुत बड़ी प्लान्स है, जो हील इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है. इसको सब इकट्ठा देखेंगे तो बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटीज आता है ये हेल्थ सेक्टर का. और इसमें वी इनवाइट एवरीबॉडी टू कम टुगेदर, बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड लेट अस टुगेदर मेक इंडिया वेरी बिग एंड वेरी हेल्दी कंट्री अंडर द विकसित भारत 2047.
1: थैंक यू सो मच सर, इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए आपने समय दिया उसके लिए
0: धन्यवाद. थैंक यू.
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केली वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। डॉक्टर सुबर्णा रॉय हमारे साथ थे जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के डायरेक्टर एवं साइंटिस्ट हैं। कैसा था आज का एपिसोड मुझे जरूर बताएगा। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।

दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। बी रिलैक्स लेकर आई हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त RJ स्वरा। दोस्तों, बी रिलैक्स में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, वैसे वैसे पूरी दुनिया में कैंसर के जो नंबर है वो ऊपर चले जा रहे हैं, मतलब कैंसर बढ़ रहा है। और इसका कारण क्या है? अब इसके ऊपर रिसर्च तो बहुत चल रही है और कहा जाता है कैंसर के ऊपर कोई दवाई नहीं है, पर बहुत सारी प्रिकॉशनरी चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर पे, आरोग्य केंद्र पर जाकर जानकारी पा सकते हैं। पर रिसर्च से ये मालूम पड़ता है कि जितना हम आर्टिफिशियल चीजों को कंज्यूम करते हैं, यानी कृत्रिम जो नेचुरल नहीं है, जिनका नेचुरल फॉर्म बदल कर हम उसको कंज्यूम करते हैं, उतना हम कैंसर को न्योता देते हैं, उतना हम कैंसर को नजदीक बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीजन का फ्रेश ऑर्गेनिक आम खाते हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, पर वही केमिकल से राइप किया हुआ, केमिकल के मदद से पकाया हुआ या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल किया हुआ जो आम होता है, वो अगर खाओगे तो आप कैंसर के नजदीक जा रहे हैं। अब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे आसपास जो हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कैंसर के, और मॉरल ऑफ द स्टोरी एक ही है कि जितना नेचुरल और ऑर्गेनिक हम रह सकते हैं, उतना हम कैंसर से दूर रहेंगे। पर अब ये तो आज के जमाने में 21वीं सदी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी दुनिया आगे बढ़ चुकी है कि पीछे मुड़ना और वापस उस देसी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल में ढलना हम सभी के लिए मुश्किल तो है ही, पर इट इज नियर टू इम्पॉसिबल। पर थोड़े बहुत प्रिकॉशंस तो हम ले ही सकते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, पर उसमें से एक स्पेसिफिक टॉपिक आज मैंने चुना है और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। पर आज का शो शुरू करते हैं और सुनाती हूँ शुरुआत के कुछ प्यारे गाने। आप सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनसु। बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

सबसे पहली बात तो एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करते हैं और आपका शरीर और आपका मन दोनों ही स्वस्थ है, तो आप कैंसर से दूर रह सकते हैं। आपकी नेचुरल रोग प्रतिकारक शक्ति अगर स्ट्रांग है तो आप कैंसर से दूर रह सकते हैं। एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए आपको पूरे दिन में कम से कम 25 से 40 मिनट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक मेडिटेशन करना है, अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, और उसके अलावा दिन भर में हेल्दी और ऑर्गेनिक खाना खाना है, खुश रहना है और आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहना है। आप अपने डाइटिशियन, अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करके आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की कॉन्शियस कोशिश जरूर कर सकते हैं, यानी जानबूझकर, सोच समझकर अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऐसी चीज है हमारे घरों में जिसके बिना हमारा दिन बिल्कुल भी नहीं चलता, और आज के जमाने में इट इज अ मस्ट। और ये एक ही चीज नहीं है हमारे घरों में, हर एक के पास एक है। यानी अगर घर में 7 मेंबर हो तो छोटे बच्चे अगर छोड़ दो तो सभी एडल्ट्स के पास, सभी बड़ों के पास, इवन टीनेजर्स के पास भी ये चीज है, जिससे कैंसर होना बहुत ही इजी है। पर अगर हम उसे सोच समझकर इस्तेमाल करें तो हम कैंसर से बच सकते हैं। क्या है वो चीज, आप सोचिए। तब तक मैं आपको कुछ प्यारे गाने सुनाती हूँ। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। Be relaxed with RJ स्वरा।

0: जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सच गेस किया। हमारे घर में जो फोन्स हैं, जो स्मार्टफोन्स हैं, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कैंसर का, क्योंकि उस स्मार्टफोन से जो सिग्नल्स निकल रहे हैं और जो रेडिएशन निकल रहा है वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। अब फोन के बिना तो हमारा बिल्कुल एक दिन नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं चलेगा, हम पैसे नहीं कमा सकते, हम जी नहीं सकते। फिर इस फोन से हम अपने आप को दूर कैसे कर लेंगे? और फोन के साथ रहेंगे तो स्वरा तुम कहती हो कि कैंसर हो जाएगा। भाई इस दोनों के बीच का एक रास्ता हम चुन सकते हैं। हमको फोन सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उससे पैदा होने वाले रेडिएशन से हम बच सकते हैं, या फिर रेडिएशन से हमारा जो एक्सपोजर है वो कम हो सकता है और हम अपने आप को कैंसर से बहुत ज्यादा दूर रख सकते हैं। तो कैसे ये सब करना है मैं आपको बताऊंगी कुछ गानों के बाद। आप सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: हेलो एवरीवन,
1: नमस्ते, मैं हूं सारा अली खान।
0: मैं हूं विकी कौशल।
1: वी होप यू लव दिस म्यूजिक वीडियो।
0: डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल।
2: तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।
3: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

अब सिर्फ फोन से ही नहीं, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जिनसे कैंसर कॉजिंग रेडिएशंस पैदा होते हैं। स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आजकल के हमारे टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो इंटरनेट से चलती है, उनमें बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और कुछ प्यारे गाने एंजॉय कीजिए। सुनते रहिए KLEV 90.4 FM, बी रिलैक्स विद आरजे स्वरा।

0: वेलकम बैक दोस्तों, बी रिलैक्स पर मैं अजय स्वरा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। अब बिना फोन के तो हम एक कदम भी नहीं घर से बाहर निकालते, पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हम फोन को हमारे पॉकेट में कैरी करते हैं, पैंट के पॉकेट में या फिर शर्ट के पॉकेट में। एक्चुअली हमारे फोन्स को अपने शरीर से इतना सटाकर या अपने शरीर के इतने नजदीक नहीं रखना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपने पर्स में, अपने हैंडबैग में, अपने ऑफिस बैग में फोन को रखिए, ताकि फोन आपके पास भी रहे और आप उससे पैदा होने वाले रेडिएशन से सुरक्षित भी रहिए। कितना सिंपल सा काम है ना। एक छोटा सा बदलाव जब आप लाते हो अपनी लाइफ में तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर, खुश और हेल्दियर बना सकते हो। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM। मैं कुछ ही देर में इन प्यारे गानों के बाद लौटूंगी। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।
1: Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Desi Nach?
2: What's Desi Nach?

अब हमारे घर में जो लैपटॉप है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी, बच्चे स्कूल के काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो लैपटॉप है उसे लैपटॉप क्यों कहा जाता है? इसके नाम में ही बताया गया है कि उसको अपने लैप पर यानी अपने गोद में रखे हम काम कर सके, यानी ऐसा सुविधापूर्ण कंप्यूटर, ऐसा सुविधापूर्ण संगणक जिसे आप अपने गोद में उठाकर कहीं पे भी जा सकते हो और कहीं से भी काम कर सकते हो। इसकी सुविधा तो बहुत है पर असुविधा भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए अपने लैपटॉप को अपने शरीर से डायरेक्टली लगाकर इस्तेमाल न करें। अपने लैपटॉप को अपने गोदी में रख के, अपने पैरों पे रख के इस्तेमाल ना करें। हमेशा लैपटॉप एक डेस्क पे या फिर एक टेबल पे रख के थोड़ी दूरी बनाकर, जैसे आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हो उस तरीके से इस्तेमाल करें। इससे आप रेडिएशन से सुरक्षित रहेंगे, दूर रहेंगे। और दूसरी बात, जब आप टेबल या डेस्क पे लैपटॉप रखते हो तो आप कुर्सी पे बैठकर सही पोस्चर में बैठकर काम करते हो। जब आप गोदी में लेते हो, बेड पे लेट के लैपटॉप के साथ काम कर रहे हो, टेढ़े मेढ़े बैठकर जैसे मन चाहे वैसे बैठकर काम कर रहे हो, तो इससे आपकी पोस्चर बिगड़ती है और आपका शरीर का संतुलन भी बिगड़ता है। इसलिए लैपटॉप को हमेशा ही टेबल पे या डेस्क पे रख के फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। इससे दो फायदे हैं, रेडिएशन से भी आपको सुरक्षा मिलेगी और आपकी पोस्चर भी ठीक रहेगी। उसी के साथ बहुत लोग ऐसा करते कि आलती पालती मार कर बैठ जाते हैं बेड पे और उसके अपने गोदी में एक तकिया ले लेते हैं और तकिए के ऊपर लैपटॉप को रखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो रेडिएशन से बच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक तकिया आपको रेडिएशन से बचाए। जितना हो सके उतनी उससे दूरी बनाकर काम कीजिए, तभी आप रेडिएशन से बच पाओगे। फिलहाल कुछ गाने आपका इंतजार कर रहे हैं, उनसे मैं आपको ज्यादा दूर नहीं रखना चाहती, तो उन गानों को एंजॉय कीजिए और यहीं पर लौट कर आइए क्योंकि मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतजार कर रही हूँ। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM, बी रिलैक्स विद RJ स्वरा।

अब अपने फोन पे ना बातें मत कीजिए। आप कहोगे कि स्वरा फोन बात करने के लिए ही होता है। आई नो फोन बात करने के लिए ही होता है, फोन पे बात मत कीजिए से मेरा मतलब है कि अपने मोबाइल फोन से, अपने स्मार्टफोन से डायरेक्टली बात मत कीजिए, मतलब उस फोन को अपने कान पर लगाकर बात मत कीजिए। इससे रेडिएशन डायरेक्टली आपके शरीर में एंटर करते हैं। हेल्दी वे क्या है, आप या तो वायर्ड ईयरफोन या वायर्ड हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कीजिए और फोन को अपने आप से दूर रखिए। और दूसरा तरीका ये है कि अपने फोन को स्पीकर फोन पर लगाइए और फिर उस स्पीकर का इस्तेमाल करके आप फोन पे या कॉल्स पे बात कर सकते हैं। हाँ, जब प्राइवेसी का मामला आता है तो हैंड्स फ्री वाला तरीका ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप अपने फोन से पैदा होने वाले रेडिएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अब आप कहोगे कि ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं, ब्लूटूथ नेकबैंड्स होते हैं, ईयरपॉड्स होते हैं, क्या हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो टू बी ऑनेस्ट उसके बारे में मेरे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, पर आप रिसर्च कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से बात कर सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट द सेफेस्ट एंड द बेस्ट वे इज टू यूज योर फोन ऑन स्पीकर और विथ वायर्ड हैंड्स फ्री। तो हमेशा याद रखना, अपने साथ अपने वायर्ड हैंड्स फ्री जरूर कैरी करना। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि, कुछ ही देर में मैं लौटती हूँ, तब तक आपको सुनाती हूँ कुछ प्यारे गाने।

0: तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूँ, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट, सारेगामा कारवां।

0: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा।
1: दारा, दारा, दारा, दारा।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाले, वो बेवफा, छलावट की।

अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सभी को हमेशा ही करनी चाहिए, जो है रात को सोने से पहले या फिर यूं कहिए शाम को या ना डिनर के बाद अपने घर में जो भी गैजेट्स है उन सभी को ऑफ कर दीजिए। आपका जो वाईफाई का राउटर है उसे भी ऑफ कर दीजिए। जब आप सोते हो तब तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हाँ, लेट नाइट तक आपको कुछ मूवीज या कुछ शोज देखने हैं या कुछ काम करना है तब आप उसे ऑन रख सकते हो, पर मैं ऐसा कहूंगी कि रात को ना इन सब चीजों का इस्तेमाल मत करें। दिन में जितना भी काम करना है कर लीजिए, रात को आराम कीजिए और इन सभी गैजेट्स को भी आराम दीजिए। अगर आपने वाईफाई राउटर बंद कर दिया है पर आपके गैजेट्स सभी शुरू है, आपका स्मार्टफोन ऑन है, आपकी स्मार्ट वॉच ऑन है और आपके जो भी इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले जो भी गैजेट्स है वो सारे अगर ऑन है और आपका वाईफाई ऑफ है तो भी उससे आप रेडिएशन से नहीं बच रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपका फोन, आपकी वॉच, आपकी घड़ी, आपका टीवी, व्हाटएवर स्मार्ट गैजेट यू हैव, इट इज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द नेटवर्क, इट इज कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर द इंटरनेट। इसलिए वाईफाई के साथ अपने गैजेट्स को भी स्विच ऑफ कीजिए ताकि उनसे पैदा होने वाले सिग्नल्स, रेडिएशंस कुछ घंटों के लिए टोटली बंद हो जाएं। और बंद करने के बाद भी इन सभी गैजेट्स को अपनी सोने की जगह से, अपने बेड से कम 4 फुट दूर आपको रखना है। रूम के बाहर ही रख दोगे तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि फिर रात को घड़ी घड़ी अपना फोन ऑन करके चेक नहीं करोगे और अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं करोगे और अच्छी नींद से आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और रेडिएशन से आप बचे भी रहोगे। तो रात को सभी गैजेट्स और वाईफाई दोनों ही आपको ऑफ करने हैं। हाँ, रेडियो ऑफ मत करना, मेरी बातें बहुत हो गई, मुझे पता है गाने सुनने का टाइम है, तो आप सुन लीजिए कुछ प्यारे गाने, मैं लौट कर आती हूँ इन प्यारे गानों के बाद।

अब और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे हाल ही में पता चली, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। जब आप किसी व्हीकल में मूव कर रहे हैं तब व्हीकल में इंटरनेट का और गैजेट्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि एक मिनट में 900 बार आपका स्मार्टफोन नेटवर्क से कनेक्ट और डिसकनेक्ट होता है, क्योंकि आपका फोन आपके साथ मूव कर रहा है, तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर हिल रहा है या जा रहा है। तो जितनी बार वो कनेक्ट डिसकनेक्ट करेगा उतनी बार, उतनी ज्यादा बार वो रेडिएशन पैदा करेगा, और आप उसके नजदीक हो तो वो रेडिएशन आपके शरीर में भी एब्जॉर्ब होगा और आपको कैंसर के नजदीक लेके जाएगा। इसीलिए व्हाइल मूविंग ऑन व्हीकल्स अपने गैजेट्स को बंद कीजिए या फिर उनका इस्तेमाल ना करें तो सबसे अच्छा है। अब आप कहोगे अगर ऐसा है तो हम GPS का, मैप्स का कैसे इस्तेमाल करें? तो बहुत सारी गाड़ियों में इनबिल्ट मैप होते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए जिनको यूज करने के लिए आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं है। और बाकी GPS और ये मैप्स और ये सारी चीजों की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जो किसी नई जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं। अपनी रोजाना की जिंदगी में, अपने रोज के रास्तों पर, अपने रोज के घर और ऑफिस के रास्तों पर आपको क्यों GPS चाहिए, आपको क्यों मैप्स चाहिए? आपको खुद को पता है ना? अगर नहीं पता है तो आसपास में किसी स्टोर में या आते जाते लोगों से पूछ लीजिए, वो आपको रास्ता बता देंगे। इसी बहाने नए लोगों से पहचान होगी, रेडिएशन से आपको छुटकारा मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, पब्लिक रिलेशंस भी अच्छे होंगे। बहुत सारे फंडे दे दिए मैंने आपको, अब बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अपनी ऑनलाइन जिंदगी से थोड़ा सा ऑफलाइन वक्त निकालिए, सिर्फ थोड़ा सा नहीं बहुत सारा ऑफलाइन वक्त निकालिए, क्योंकि जितना आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करोगे उतना अपना स्मार्टफोन या लैपटॉप और इंटरनेट आप कम इस्तेमाल करोगे उतने आप रेडिएशन से बचे रहोगे। तो अपने आसपास जितने रेडिएशन पैदा हो रहे हैं उससे खुद को बचाने की कोशिश जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। सुनते रहिए KLE वेणुध्वनि 90.4 FM।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधुनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है, यादों के बारा हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है, इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।